फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

सर्वप्रथम अभिनंदन वंदन अपने देश का। यहाँ जल, यहाँ की माटी, यहाँ की वायु में जीवन ही नहीं बल्कि अपनापन है। इस अपनेपन में हमें मिलते हैं संस्कार, आचार, विचार, व्यवहार। हम ऋणी हैं यहाँ की मिट्टी के, अपनी भारत माँ के।

क्या लाए हैं जो साथ ले जाएंगे, छल कपट झूठ स्वार्थ ये सब यहीं धरे रह जाना है। ईश्वर ने हमें इस धरा पर भेजा है तो ये हमारे कर्म और उसकी महानता है, उसका हमारा सिर्फ इस जन्म का नहीं जन्मों का नाता है। कर्म अच्छे रहे तो हर जन्म अच्छा मिलेगा, यही ईश्वर का संदेश है।

जब कुछ ना लागे मेरा तो क्या मेरा क्या तेरा, प्रभु जो कुछ है सब कुछ तेरा, बस इतनी कृपा बनाए रखना। कोई मानव धर्म निभाए या ना निभाए, पर हमें हमारे मानव धर्म से ना भटकने देना। तुम्हारी शरण ही हमारे हर जीवन का आश्रय है।

यदि हम अपनी कर्म करते करते एक पल भी ईश्वर का ध्यान कर लें, उनकी याद करें, तो वह हमारी पुकार सुनता है। वह दयालु है, कृपालु है, हमारा पालनहार, हमारे जीवन के हर रास्ते का वो मार्गदर्शक है। संकट के सागर में डूबती हमारी नाव का वो खेवनहार है।

अष्ट सिद्धि नौनिधि के दाता स्वामी भक्त प्रभुराम के प्रिय पात्र वीर हनुमान बजरंगबली, अपने भक्तों की विपदा को हरने वाले तुम्हारे स्मरण मात्र से हमारा मन भक्ति श्रद्धा से ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भर उठता है। तुम हमारी भक्ति ही नहीं शक्ति भी हो प्रभु।

अभी आप सुन रहे थे वंदना FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान। आज स्वर कलाकार हैं वाणी जयराम, संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। तो लीजिए सुनिए इस श्रृंखला का ये भाग 42।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। आज स्वर था वाणी जयराम का, संगीत निदेशक थे सतीश भाटिया। आज आपने सुना इस श्रृंखला का भाग 42 और इसके साथ ही संपन्न होता है ये कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे चिंतन, आलेख है श्री वासुदेव शास्त्री का और वाचिका है माधवी एंडे।
1: जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वो शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जहां हम जन्म लेते हैं उस माटी की सुगंध दुनिया के कोने कोने में फैले, यही प्रयास हमें सतत करना चाहिए। धर्म, जाति, भाषा चाहे अनेक हों, लेकिन अनेकता में एकता की हमारी पहचान हमेशा अक्षुण्ण रहे। आज देश में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग भाषा के नाम पर, जाति, संप्रदाय, धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी तो सेंक लेते हैं, लेकिन वो ऐसा बीज बो जाते हैं जो हमें कई सालों तक कांटा बनकर चुभता रहता है। किसी भी प्रकार का टकराव देश हित में नहीं होता। एक ओर जहां हमने विकास के नए नए मापदंड स्थापित किए, वहीं हमने विनाश के भी अत्यंत उन्नत तरीके ईजाद कर लिए। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। आतंकवाद सुरसा की तरह फैल रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सोच देश हित में विकसित करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। किसी भी देश का भविष्य बच्चों और युवाओं पर होता है। यदि आज का युवा मुख्य धारा से बिछड़ गया तो देश का कल्याण नहीं हो सकता। युवाओं को चाहिए वे ऐसा कार्य करें जिसे आने वाली पीढ़ी याद रखे और उनके कार्य प्रेरणा पुंज बनकर देश और

0: समाज को सदैव आलोकित करते रहें। आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा हमारी पहचान होना चाहिए। ऊंची ऊंची उन्नत मर्यादाओं की बात करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन उन मर्यादाओं की रक्षा करने वाले लोग शायद ही कभी नजर आते हैं। आज देश में भाषा को लेकर एक नई जंग छिड़ी हुई है। ये जंग कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा छेड़ी गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें ऐसी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना होगा। हमारा भारत अखंड है और अनेकता में एकता हमारी पहचान है। इसे बरकरार रखना है। ऐसा करके ही हम विश्व गुरु की पदवी पाकर संसार का मार्गदर्शन कर सकते।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था श्री वासुदेव शास्त्री का, जो देश प्रेम पर केंद्रित था।

ये है आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र, आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:50 पर सुनिएगा हेलो छिंदवाड़ा में कुछ स्थानीय सूचनाएं और साथ में देशगान। सुबह 7:20 पर सुनिएगा कुछ बातें कुछ गीत जो केंद्रित होगा विश्व जनसंख्या दिवस पर। सदाबहार फिल्मी नगमे आप सुनेंगे गीत गंगा में सुबह 7:35 पर। फिल्म संगीत से पुनः हम आपको जोड़ेंगे सुबह 8:30। शक्ति रूपा सुनिएगा सुबह 10:05 पर, इसमें मन की बात होगी छोटा परिवार सुखी परिवार पर, साथ ही चर्चा होगी नींद और स्वास्थ्य के संबंध में। इसके अलावा सुनिएगा फिल्मी गीत, छोटी मोटी काम की बातें और 100% की एक बात। माटी के स्वर में कुछ लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 10:35 पर। शाम 5:30 पर युवावाणी में आज की बात होगी बढ़ती आबादी और बदलती ज़रूरतों पर, साथ ही सुनिएगा साहित्य सरिता सुरताल। इसके अलावा शामिल है तरुणों की पसंद, आज का इतिहास, कल के आकर्षण और अमृतवाणी। माटी के स्वर सुनिएगा शाम 6:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:30 पर।

शाम 7:20 पर सुनिएगा किसान फणी, इसमें आज की बात होगी शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर, चर्चा होगी बागवानी फसलों में आय बढ़ाने का तरीका, हाईटेक नर्सरी, साथ ही शामिल है आज का मौसम, बाजार भाव। मेरी पसंद सुनिएगा रात 8:00। गैर फिल्मी गजलें आप सुनेंगे रात 8:30 पर।

स्पॉटलाइट सुनिएगा 9:15 पर, जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे दिल्ली से रात 9:30 तक, और इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम विवरण।

विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम हम आपको आज सुनवाएंगे सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, दिन में 2:30 से शाम 5:30 तक, रात 9 बजे से रात 9:15 तक, रात 9:30 से रात 11 बजे तक। विविध भारतीय सेवा के कार्यक्रम हम आपके लिए अनुप्रसारित करते हैं मुंबई से।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 6:50 हुए हैं। वक्त है हेलो छिंदवाड़ा व देशकान का। तो पहले आप सुनेंगे हेलो छिंदवाड़ा, इसमें लीजिए सुनिए कुछ स्थानीय सूचनाएं। जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं में ये पहली खबर। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत जिले से चयनित तीर्थयात्रियों को कामाख्या तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए 11 जुलाई 2026 से 16 जुलाई 2026 तक की समय सारणी निर्धारित की गई है। योजना के तहत विशेष ट्रेन 11 जुलाई 2026 शनिवार यानी आज दोपहर 3:30 पर छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इसके लिए चयनित तीर्थयात्रियों की सूची संबंधित जन पंचायतों व नगरीय निकायों को पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अगली खबर। ज़िला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा ने बताया कि CWSN बालिका छात्रावास BTI कैंपस छिंदवाड़ा में अतिथि शिक्षक सांकेतिक भाषा पूर्णकालिक का एक पद मानदेय 8,000 रुपये प्रति माह और इंस्ट्रक्टर ब्रेल लिपि अंशकालिक का एक पद मानदेय 5,000 रुपये प्रति माह एवं केयर टेकर पूर्णकालिक का एक पद मानदेय 8,000 रुपये प्रति माह भरा जाएगा। इसी प्रकार CWSN बालक छात्रावास चंदनगांव छिंदवाड़ा में स्वीपर पूर्णकालिक एक पद मानदेय 6,500 रुपये प्रति माह तथा इंस्ट्रक्टर ब्रेल लिपि अंशकालिक का एक पद मानदेय 5,000 रुपये प्रति माह के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव अनिवार्य रहेगा। संबंधित विषय में स्नातक के साथ विशेष शिक्षा में DED, BED, MED एवं न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव अथवा पदानुसार निर्धारित योग्यता आवश्यक होगी। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा ने बताया कि सभी नियुक्तियां 10 माह की अवधि के लिए होगी तथा नियुक्ति संबंधी अंतिम निर्णय जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा का होगा। आवेदन एवं पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा केंद्र छिंदवाड़ा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

अगली खबर। छिंदवाड़ा ज़िले की औसत वर्षा 1,059 मिलीमीटर है तथा ज़िले में अभी तक 294.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि तक 416.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई थी। ज़िले में 10 जुलाई 2026 को प्रातः 8 बजे समाप्त

24 घंटों के दौरान 0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही संपन्न होता है हेलो छिंदवाड़ा। आइए समूह स्वरों में जुड़ते हैं इस देश गान से।

0: अभी आप सुन रहे थे हलो छिंदवाड़ा व देश गान। इसके साथ ही संपन्न होता है ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का छिंदवाड़ा केंद्र है। सुबह के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। ये मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा

0: और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7:05 हुए हैं। वक्त है कुछ संदेश का।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वात रोग, उदर रोग, मूत्र रोग, चर्म रोग, मानसिक रोग, श्वास रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, स्त्री रोग के इलाज हेतु विभिन्न पंचकर्म विधियों व आयुर्वेदिक दवा का प्रयोग आज ही संपर्क करें डॉक्टर निधि जैन, आदिवासी संग्रहालय के सामने छिंदवाड़ा। कॉल करें 9794543985।
5: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा

0: क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे ये संदेश। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आइए आपको लिए चलते हैं भोपाल।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता, 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में करेंगे माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने देर रात उज्जैन में सिंहस्थ निर्माण कार्यों का लिया जायजा। और भाजपा ने दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को बनाया प्रत्याशी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद ये यात्रा दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ।
0: उन्होंने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन में प्रदेश भर से करीब 5,000 युवा हिस्सा लेंगे। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, कृषि और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। युवाओं द्वारा तैयार सुझावों से माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 दस्तावेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री इस अवसर पर 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की भी घोषणा करेंगे। प्रदेश के जेल विभाग ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भोपाल में 7 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ये प्रशिक्षण गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के सहयोग से हो रहा है। महानिदेशक जेल डॉ. वरुण कपूर ने कहा कि बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण में प्रदेश भर के जेलों से 30 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। प्रशिक्षित स्टाफ बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की पहचान और परामर्श कर सकेंगे। विभाग आगे जेलों में साइको सोशल काउंसिलिंग सेंटर भी स्थापित करेगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत तीसरे चरण की लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें 7,630 बच्चों को पसंदीदा निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश मिला। इस वर्ष अब तक 1,25,000 से अधिक बच्चों को प्रवेश आवंटन मिल चुका है। अभिभावक आरटी पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चे 20 जुलाई तक आवंटित स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे।

0: प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों में करीब 80 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मंत्री राजपूत ने कहा कि जैसीनगर अब एक प्रमुख जंक्शन बन चुका है। 65 करोड़ रुपए की लागत से नया मार्ग जैसीनगर को तीनों दिशाओं से जोड़ चुका है। वहीं मसूराहाई रोड बनने से भोपाल जाने की दूरी 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की प्रगति साझा की। ये बैठक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तीसरी मिशन संचालन समूह बैठक थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 5.86 करोड़ आभाईडी बनाई जा चुकी है। लगभग 20,000 स्वास्थ्य संस्थान और 18,000 स्वास्थ्य पेशेवर रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। बैठक में एबीडीएम की प्रगति और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधान सभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल देर रात दोपहिया वाहन से और पैदल चलकर उज्जैन शहर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सिंहस्थ महापर्व के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने फ्रीगंज ब्रिज और कोयला फाटक से कंठाल चौराहे तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण का भी अवलोकन किया। इससे पहले कल उन्होंने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की उपस्थिति में नागदा में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन मार्ग का भूमि पूजन किया। लगभग 99 किलोमीटर लंबी ये परियोजना 5,017 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में फूड इंडस्ट्री पार्क बनने से किसानों को लाभ मिलेगा।
1: 1,250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा तो 32 जिलों में आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें, ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भाजपा ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। टिकट की घोषणा होने के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर लंबा जाम लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीदा था, लेकिन पार्टी ने अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया। प्रदेश सरकार ने सत्र 2026 से सभी शासकीय आईटीआई में महिला प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क में 25% की छूट देने का फैसला किया है। इससे महिलाओं को प्रथम वर्ष के शुल्क में 1,335 रुपए की बचत होगी। अब प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 4,755 रुपए होगा। राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कहा कि निर्णय बेटियों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौजूदा सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिससे 13 जुलाई तक प्रदेश में रिमझिम बारिश होगी। वहीं 14 जुलाई को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में पहला महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 83 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने भी अर्धशतक जड़े। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलिक्सटोन ने 3 विकेट लिए। जवाब में इंग्लैंड ने पहले दिन के खेल तक 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। प्रदेश के धावक विनोद सिंह ने चीन के ओरदोस में हुई एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। खेल मंत्री ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश और देश के लिए गर्व का विषय है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ कलेक्टर ने 13 जुलाई को आयोजित होने वाली जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैतूल कलेक्टर ने कल उप तहसील बोरदेही में आयोजित खंड स्तरीय समीक्षा बैठक में ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। साथ ही एक पेड़ मां के नाम के तहत आम का पौधा भी रोपित किया। डिंडौरी जिले के 50 मत्स्य पालकों ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर कल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में राज्य स्तरीय

कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत मंडला जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आज से 16 जुलाई तक कामाख्या शक्तिपीठ तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। पन्ना जिले में बरसात के मौसम में विभिन्न स्थानों पर झरना और जलप्रपात पर अत्यधिक समीप जाने, सेल्फी और फोटो लेने पर प्रतिबंध लगाया है। झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कल कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। आगरमालवा कलेक्टर ने कृषि, सहकारिता, पशुपालन, उद्यानिकी, जल संसाधन आदि विभागों की समीक्षा बैठक में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया। खंडवा जिले में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से 18 जुलाई तक परिवार नियोजन और मातृ शिशु स्वास्थ्य को लेकर विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत।

0: कुछ बातें कुछ गीत।
1: नमस्कार, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम मित्रों। आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो सखी गीतांजलि गीत। मित्रों, आज है विश्व जनसंख्या दिवस। जी हाँ, जो हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है ताकि हम सब सजग हों हमारी बढ़ती जनसंख्या के प्रति। तो जाहिर है आज हमारी जो बातें हैं वो इसी संबंध में होगी। मित्रों, कहते हैं किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या होती है, लेकिन जब यही जनसंख्या संसाधनों से कहीं अधिक तेजी से बढ़ने लगे तो वही ताकत एक बड़ी चुनौती का रूप ले लेती है। ज़रा सोचिए, अगर एक घर में 5 लोगों के लिए भोजन हो और वहाँ 10 लोग रहने लगे तो क्या होगा? हर व्यक्ति का अपना हिस्सा कम हो जाएगा, है ना? बिल्कुल यही स्थिति आज हमारे देश की भी है। आज बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छ पानी, यातायात और पर्यावरण जैसी मूलभूत सुविधाओं पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। हर दिन लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। शहरों में भीड़ बढ़ रही है, सड़कें जाम हो रही है, अस्पतालों में लंबी कतारें हैं, स्कूलों में सीटें कम पड़ रही है, प्राकृतिक संसाधन तेजी से घटते जा रहे हैं। यह केवल सरकार की चुनौती नहीं बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। अगर इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही और संसाधन ज़रूरतें पूरी ना कर पाएं तो हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। मित्रों, कल्पना कीजिए, अगर एक बस में 50 सीटें हों और इसमें 100 लोग बैठने की कोशिश करें तो क्या होगा? धक्का मुक्की, असुविधा और परेशानी, है ना? कुछ ऐसा ही हाल हमारे संसाधनों का हो रहा है। माना कि हमारी बढ़ती जनसंख्या का ये सफर बहुत कठिन है, पर हमें उदास नहीं होना है, हल भी तो हम ही निकालेंगे, है ना?

ना उदास हो मेरे हम सफ़र। जी हाँ, हर समस्या अपने साथ एक समाधान भी लेकर आती है। यदि हर परिवार शिक्षा को प्राथमिकता दे, परिवार नियोजन के प्रति जागरूक बने, बेटा बेटी में भेदभाव ना करें, जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे, तो यही बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मित्रों, बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता। बदलाव की शुरुआत एक विचार से होती है, फिर यह विचार एक संकल्प बनता है। तो आइए संकल्प लें, जागरूकता, महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण, परिवार नियोजन और के साथ साथ सबसे ज़रूरी है हम जिम्मेदार नागरिक बने। याद रखिए, छोटा परिवार एक नारा नहीं बल्कि बेहतर जीवन की कुंजी है। जब परिवार छोटा होगा तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, याद रखिए जनसंख्या पर नियंत्रण विकास का सशक्त आधार, छोटा परिवार खुशियों का संसार। मित्रों, हम तो मुसाफिर हैं, क्या लाए हैं और क्या ले जाएंगे, इसलिए उतना ही बटोरो जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यही मूल आधार है जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का। आइए अब जुड़ते हैं इस गीत से।

और इसके साथ ही संपन्न होता है आज का ये कुछ बातें कुछ गीत, जो केंद्रित था विश्व जनसंख्या दिवस पर। और इसके साथ ही अपनी रेडियो से रखिए गीतांजलि गीत को, दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कुछ बातें कुछ गीत।
1: अभी आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे गीत गंगा। आगाज हम कर रहे हैं फिल्म खामोशी से। आवाज़ है हेमंत कुमार की और संगीत भी है हेमंत कुमार का। गीत को लिखा है गुलजार ने। पुकार लो तुम जहाँ हो।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन,
4: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से HIV एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
1: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: आइए जुड़ते हैं अगले गाने से, जिसे हमने लिया है फिल्म आंधी से। क्षमा कीजिए, फिल्म है घर। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने और आवाज़ है लता मंगेशकर की। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, सांस चलती है पर जिंदगी नहीं चलती।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अनुपमा से। आवाजें लता मंगेशकर की, शब्द रचना कैफी आजमी की और संगीत दिया है हेमंत कुमार ने। कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जिसमें याद ही याद होती है।

0: आइए अब आपको जोड़ते हैं कुछ संदेशों से।
1: बहन, कई दिनों से सिर दर्द रहता है, आंखें भी दुखती हैं, धुंधला दिखता है और चुभन भी होती है।
2: भाई, इसे नजरअंदाज मत कर, ये आंखों की कमजोरी या नंबर बदलने का संकेत हो सकता है।
1: तो क्या करूं?
2: आज ही मोहित चश्मालय जाओ, आंखों की जांच करवाओ। मोहित चश्मालय, आपकी आंखों का भरोसेमंद साथी।
1: मोहित चश्मालय?
2: हाँ, मोहित चश्मालय, स्टेट बैंक के पास खज

0: जी सुनो, कल चौपाल में सरपंच की बहू बता रही थी उनका तेल 15 दिन में खत्म हो गया।
1: अरे भाग्यवान, हमारी रसोई में शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल है। ये कम खर्च होता है इसलिए ज्यादा चलता है, पूरा महीना आराम से निकल जाएगा।
0: मतलब महंगाई में भी बचत
1: और स्वाद भी बढ़िया, सेहत का भी ध्यान।
0: वाह, इतनी खूबी।
1: शिखर गोल्ड सोयाबीन तेल अब आपके नगर की सभी किराना दुकानों पर उपलब्ध।

आइए वापस जोड़ते हैं आपको गीत गंगा से और सुनवाते हैं ये आखिरी नगमा, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने फिल्म ममता के लिए। इस गीत को शब्दों में ढाला है मजरूह ने और संगीत से सजाया है रोशन ने। रहे न रहे इस जहां में, फिर भी असर छोड़ जाएंगे यादों की खुशबू बनकर हर दिल में महक जाएंगे।

ये गाना हमने आपको सुनवाया था फिल्म ममता से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत को लिखा था मजरू ने, संगीत से सजाया था रोशन ने, और इसके साथ ही संपन्न होती है आज की ये गीत गंगा। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से, सुबह के 8 बजने वाले हैं।

0: समाचार, उसके बाद अंग्रेजी में। आइए समाचारों के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
5: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
3: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
5: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
3: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
6: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand

0: in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
2: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज हैं और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात

0: आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
3: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से। आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आगाज़ हम कर रहे हैं फिल्म एयरलिफ्ट से।

ये गाना हमने आपको सुनवाया था फिल्म एयरलिफ्ट से, आवाज़ें थी अमाल मलिक और के की, गीत था कुमार का, संगीत था अमाल मलिक का। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं गाना जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, जावेद अख्तर के बोलों को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, और फिल्म है बड़ा दिन।

लीजिए सुनिए अगला गाना मिस्टर आशिक से, आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की, संगीत है एक बार फिर जतिन ललित का।

आइए बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं ये गाना, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने। लिखा है इस गाने को आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। फिल्म है गंगा तेरे देश में।

आग लगाना फिल्म खिलाड़ी से, आवाज अभिजीत और अलका याग्निक की, गीत तनवर सागर का, संगीत जतिन ललित का।

फिल्म खिलाड़ी से लिया था ये गाना हमने, आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू का, सानू की। संगीत था जतिन ललित का और गीत था अनवर सागर का। इसके साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी छिंदवाड़ा है। आइए विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुनते हैं मुंबई से।